तू अपना बिरध पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बांह फड़ ले जिन्ना ने तेरा नाम जपे।

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा, अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे, बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जाओ दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया, दलिदरी हो गया, घरवाली दे कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया, ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उन्हां नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। कहण लगी जे सानू ओ ना भुलदे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी, तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामां पईआं, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैन नहीं, भगवान चट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा।

ये कंटक जाल परे पग तो है। आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए, इन्हें दिन किथे रे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा फर के ले आई, जिसले चरण तोन लगे। आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निद रोए। नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो, बस नैनन के जल से पग तो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया, नैनन के जल से पग तोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर तो दे। फिर आखन लगे सुदामे, सुनिया भी तेरा व्याह हो गए, हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं, सुखी हन, थोड़ी कृपा है। कह लगे सुदामिया, जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं, मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं, ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी, जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया, कुछ दिता नहीं, चुप रहे। अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलां दी पोटली जिसले कड़ी, आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन, वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने, ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले, भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे। आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद, भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा है, ये मेरे भक्त दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा, बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां, दुख सुख खोले। एक दिन सुदामे ने बेनती की थी, भगवान हुण आ गया बख्शो, बड़े दिन हो गया इथे रहिंदिया, हुण घर जावा वापस, बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे, अजे साडा दिल नहीं परे, आ पुराना प्यार सीते आ गए, जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन, ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन, ओ दिन नहीं भुलते। सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन, इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े, भगवान हुण आ गया बख्श। कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है, पता नहीं की कुछ बख्श। वड़ियां दा कम है दान देना छुपा के दे, होछियां दा कम है दान देना दिखा के देना। आख्या वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण, भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नू छड़न वास्ते, कुट गल वखड़ी पाई, सुदामिया फिर भी आ। सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तां कुछ नहीं, बस गली बाती प्यार बड़ा कीता है, पर कुछ दे दिंदे। घरवाली नू की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा, भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन। ओ की आखेगी ओदे द्वार तो तू खाली आ गयो, तेनू कुछ ना मिलिया। ए मन विच पिया सोचदा ही सी, इसे कुट गल वखड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी। पुठे पैरी सुदामा तुरिया, कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया, ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो, चंगे एस जमाने दे यार जारो, जेड़े हाल आए मुड़े जाम दे हां, केड़ा बख्श दिता सानू माल यार।
ਹੱਥੋਂ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੌਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਮਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੁਦਾਮਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਉਸਤੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ।

ठंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल।

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

की पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां श्लोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा। जी मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बता दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने। एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, फिर थले डिग जाता है। इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापियां, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

0: जब हर पावजल करना।
1: कैसा 100% गैस और फिर साडे सामने ही है। टीचर ने तो एक बार दस देता तो उनके बस में काम तेरा हो गया तो पास हो गया बस हूं अगले साल फिर गैस लावांगे। नहीं, गुरु साहबान ने ऐसी कृपा की इतने रखे दिता संभाल के रख दिता जो जदों जेनू जिथे जरूरत पवे ये गैस हमेशा ही काम आई जाने ने हमेशा ही। इसलिए इन्हों इतने महफूज करके रख दिता गुरु अर्जन देव। सच्चे पातशाह एक होर तो कहने ना।

गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सत संगत दी कुखों जन्म लैंदा सत संगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनू गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबो वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसी पासों सुगंधी आ रही सी किसी ने आके पूछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी।

कब्रिस्तान कोलो लंघ रहे हां तां गौर विचों आवाज आई, ऐ फरीद तू मर के भी मेरे पास आना है, हुणे ही आ जा, पटकना छड़ दे, जे तू मेरे पास आ जावेगा मैं तेरे तीन कार्ज सवारांगी, मुर्दे नूं कोई थां नहीं होंदी मैं तेनूं थां देवांगी, फिर मैं तेरे पर्दे ढकांगी, ते तीसरा काम मैं तेरा ए सवारांगी कि मैं आप मिट्टी हां तेनूं भी अपने वर्गा रूप दे देवांगी। फरीदा गोल निमाणी छड करे, एक ता ए गोर है जिसनू फरीद ने आवाज दिती सी, ते एक गुरु की गोद भी गोर है, गुरु की गोद तां गुरु ग्रंथ साहिब भी पुकार पुकार कह रहे हैं, ऐ मनुख तू सत संगत विच आ जा। हां देखी किते हंकार दे नाल ना आवीं,

फरीद जी, क्योंकि फकीर हर रंग विच राजी रहिंदा है, उनू किसे सेजा दी लोड़ नहीं, किसे सुख साधन दी लोड़ नहीं, किसे मैल माड़ियां विच विराजन दी ख्वाहिश नहीं होंदी। फकीर कहिंदे हन कि जिन्हां ते आसमान दा साया है उन्हां नू मैल माड़ियां दी लोड़ ही नहीं। रब दे फकीर कहिंदे हन जिन्हां नू धरती दी गोद प्राप्त है उन्हां नू सेजावां दी लोड़ ही नहीं। फरीद जी खुले मैदान विच आप बैठे हन, प्रभु दा सिमरन कर रहे हन। एक हंकारी पुरुष सफेद पोश कोलो डंगया, आख्या क्यों पखंड बनाई बैठा, मिट्टी विच रुलिया तो रब दी प्राप्ति नहीं होती, तू धूड़ विच बैठा, मैल विच बैठा हुआ। फरीद जी ने नेत्र खोले, आख्या भाई भले पुरशा इस खाक दी निंदिया ना कर, एक खाक बड़ी सेवा करती, क्योंकि जीवदियां पैरां तले मोया ऊपर होए, तो मर जाएगा तेरे पर्दे ढकेगी, इसलिए इस खाक

जी नदी दे किनारे सैर करते हुए जा रहे हैं ते की तकिया नदी किनारे बगला बैठा केल खा रहे है, मच्छी पकड़ता है, चुक के ऊपर सुटदा है ते फिर मुंह विच बोच लेता है। केला कर थोड़ा ही समा बीतिया सी के बाज ने आके झपट मारी, मच्छी मुख विच है ते उस समेत बगले नू बाज चुक के ले गया। फरीद जी कहंदे ने मेरे मन ए काल रूपी बाज तैनू भी एवें पो पदार्थां रूपी विछिया रूपी नदी दे किनारे ते तू बैठे खेल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मैनू कौन पुछदा है केड़ा पापा दा बदला देना पैंदा है। आख्या जदों काल ने झपट मारनी है तो तेरियां केलां तू जितनियां खुशियां विच रुझिया होया सब इत्थे ही रह जानियां। फरीदी उच्चारण करते हैं।

मनुख बड़े सामान इकट्ठे करता, बड़िया वस्तुआं संभाल संभाल रखता है। भाई ये इस उम्र विच आ उस उम्र विच 100 बरस का समान इकट्ठा कर ले, पर पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना। पर मनुख बहुत कुछ कर ले। फरीद जी कहते हैं भाई ये तो कंधी उत्ते रुखड़ा, ये मनुच्छा जन्म जिस तरह वहदे दरिया के किनारे ते कोई छोटा जिहा बरूटा होवे ते कोई पता लगदा किस वेले पानी दी छल आवे उस बूटे नू रोड़ के लै जाएगी। बस तेरा भी इतना को ही जीवन है, क्यों एडिया पक्कियां बन बैठे एनी लोइनी देखदियां केती चल गई, तेरे अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए, तैनू अजे भी समझ नहीं आउंदी। तू भी उसे लाइन च खड़ा, पता नहीं कल की दीवारी है भाई। ते फिर इसनू जप जप के मनुच्छा जन्म दी सफलता, साध संगत दी सेवा और सिमरन करना, मन जोड़ना, अमृत वेले उठना। जो भी कोई गुरु, किसे दा भी कोई गुरु है वह मुबारक है, अपने गुरु दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के अपना जीवन सफल करे। मनुच्छा जन्म ताई सफल हो सकता है, संसार ते आना ताई सफल है। इसलिए फरीद जी कहते हैं फरीदा चार गमाया खंड के चार गमाया सम, तू ते जेड़ी गल चेते रखनी सी वो तैनू भुली गई है। तू चार कम तो चेते रख ले, खाना पीना हसना सौना, ते विसर गया है मरना। जे तैनू मरना याद होंदा तो तू अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन कर। तैनू पता होंदा मैं संसार ते किस लिए भेजा गया और केड़ा कम कर रहा। इसलिए चार गवाया हंड

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है, जब तेरे नाल मेरा प्यार है, तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई? उस प्यार दे नाल ते मेरिया तमाम भुखा कहते हैं वह पूरिया हो गई हैं। तू मेरो प्यारो, इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती, कोई शख्सियत, कोई बींग मौजूद है जिस दे नाल महाराज जी का

तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा और आते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है वो मृत्यु तो रहत है इतना महान है। सो इतने एक प्यारा आंदा है इतने एक हस्ती आंदी है इतने एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार कहते हैं

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहंदे मेरी सारिया नाल ही बनती है साधी। ध्यान नाल अपनी जिंदगी च देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती। साड़ी बनती किस दे नाल? पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई। कहंदे मेरी सारिया दे नाल ही बनानी है, मैं सारिया नाल ही प्यार है। कहंदे प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लो बाद दे विच। कहंदे हन

मैं उन्हां दे चरनी लगदा हां, मैं उन्हां दे पैरी लगदा हां। कहिंदे संत सहाई प्रेम के, संत ही हन जो हेल्पफुल हन, जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आप प्रेम दे नाल भरे हुए हन, अते ओ क्योंकि प्रेम दे नाल भरे हुए साडे अंदरों प्रेम जगा सकते हैं। इस करके कहिंदे मैं संतां दे चरनी लगदा हां, पर साडी ईगो तो सानू चुकनी ही नहीं दिंदी, असी तो किसी के चरनी लग ही नहीं सकते। पर बाणी ते आखदी है ना, साडे अजिहे कॉन्सेप्ट बन गए हैं कि असा गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो अलावा किसी ने मत्था नहीं टेकना, और उस दे नाल असी इतने हंकारी हो गए हैं कि कोई भी शख्सियत आ जाए, कोई गुणवान आ जाए, पर असी झुक नहीं सकते क्योंकि साडी ईगो ऐसी है। और जब तक असी चुकांगे नहीं, असी समझ लो पत्थर हैं, और पत्थर च भी कदे प्रेम पैदा हो सकता है? महाराज जी आपने हम संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागों पाए, जे पैरी लगना चरनी लगना गुरमत दे विच उल्ट हुंदा ते आपंक्ति क्यों लिखी हुंदी? वो कहंदे हों तिनके लागों पाए, वो इतने महान हन कि वो प्रेम का ही सागर बने पाए हन, उन्हां दे मैं चरना दे उत्ते लगदा हां, चरनी लगदा पैरों से मत्था टेकना। संत सहाई प्रेम के हां तिनके लागों पाए, सिर्फ उही हन जो साडे जीवन दे विच प्रेम पैदा कर सकते हैं। उसकी अगे चल के विचार की जाएगी अगले कीर्तन च कि वह किवें करते हैं। प्रेम किवें प्राप्त किया जाए, हुण इस उत्ते प्रमाण चल रहे हैं। अगला प्रमाण कहते हैं, मन रे राम जपो सुख होए। कहते हैं मन रे राम जपो, पर महाराज जी राम नाल तो सारा प्यार ही नहीं है, उसमें जपिए किवें? जब प्यार ही नहीं है उसमें जपिए किवें? पहली अद्धी पंक्ति च आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, उसनू जप के सुख होएगा, पर जब उस प्यार ही नहीं है तो उसमें जप कितना लीए? ये मनुआ दैन स्थान का वह कैसे हर गुण गावे? ये मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है, किवें उहदे प्रेम नाल गुण गावे? प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन दे अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकदा है। कहंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति दा कहंदे हन

वहीं कंटिन्यू करेंगे। आओ इस पंक्ति गा के जो कुछ कहा गया है इसनू याद रखने की कोशिश करनी ते कल समय से दर्शन देने। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, एक प्यार दी एक मॉडल है, एक प्यार दी इंतहा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है ते मैं जीना हाँ, वरना कहते मेरे तो जीना भी मेनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

ऐसी शक्ति मालिक ने बख्शिश कीती है, कोई भी कार्य आरंभ करिए तामी अरदास, कार्य समाप्त होवे तामी अरदास, दुख विच अरदास, सुख विच अरदास। अरदास एक साडे जीवन दा पहला अंग है। हुण सतगुरु सानू समझांदे ने अरदास करनी किवें। अरदास आरंभ हुंदी है, सब तो पहले असी की पढ़ने हैं,

क्योंकि अरदास खलो के होंगी। अरदास एक जोदड़ी एक मिनट तरला है ती खड़िया होके ही कीता जा सकता है। हुण जिवें किसे अदालत विच कोई केस पेश होवे जज सामने उच्ची कुर्सी ते बैठा हुंदा है केस पेश करन वाला वकील खड़ा होके कर वो खड़ा होके केस नूं सुनांदा है कि एक केस किस प्रकार है। इसे तरह भाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं उन्हां अगे असीं अपनी अर्ज सुनानी है ते सानूं खड़िया होके सुनानी पए। आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सावधान हो गए खड़े हो गए तीसरी विधि

सावधान खड़े हो गए। फिर साहब कहते दो एक कार कर कहते हथां दोवें हाथ जोड़ लैनी दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावीता आने रास। हे मेरे मालिक मैं जो अरदास कर रहा जे तेनू भा जाए तेनू चंगी लगे ते मेरी अरदास मंजूर हो सकती। खड़े हो गए सावधान हुण दोवें हाथ जोड़ लै उस मालिक नू अरदास सुनाण वास्ते। साहब कहिंदे ने उस तो बाद की होना चाहिए है हजूर हाजरी अरदास सब तो जिहड़ी अहमियत रखण वाली गल है ना वह यह है कि साडे मन नू यकीन है भरोसा है अकीदा है फेत है कि ऐसा विश्वास है कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहा वह बैठा सुन रहे है। जे साडे मन नू ही यकीन नहीं ते अरदास सुना किनू रहे। यह यकीन होना बड़ा जरूरी है, है हजूर हाजर अरदास ओ भाई ओ ते हाजर है हजूर तेरे सन्मुख विराजमान है तू आप हाजर होके अरदास कर क्योंकि आपनू याद होवेगा गुरु नानक गए हाजरा दी नमाज विच हाजर नहीं होए सत संगत वो गए हाजरा की अरदास हाजिर होणगे बिल्कुल नहीं। मन यकीन होवे है हजूर वो है हां हाजिर अरदास मैं हाजिर होके अरदास करा क्योंकि बहुतियां का शिकवा गिला है शिकायत है कि साड़ी अरदास मंजूर नहीं हुई बड़े चिरां तो अरदास कर रहे हैं अरदास मंजूर नहीं हुई। वह बोलिया यह भी तो हो सकता तेनू अरदास सुनानी नहीं आई तेनू अरदास करनी नहीं आई। एक शायर ने बड़े कमाल की गल कही तो कहना खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है बस यही तो मुश्किल है ये बड़ी मुश्किल से होती है। गल तो यह है कि हुंदी बड़ी मुश्किल है जब तक सावधान ना होवे खड़ा ना होवे हाथ ना जोड़े मन यकीन ना होवे कि जिदे अगे मैं अरदास कर रहा वह बैठा सुन रहा है अरदास सुना किनू रहे। इसलिए भाई पहले आपने

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हैं। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवां दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दिती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते 40 दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है, यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना है, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद कीता गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली ने। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद कीता गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गर्ज के कहन लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रत्यक्ष दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। समुंद खान मानो पत्थर का बुत हो गया,
ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸਾਸ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।